0: दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताव न होई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात मह जोत जोत मह जाता अकाल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सुआलो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जिको जाने पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ महला दूजा।
0: ए कृष्ण सर्वदेवा देव दिवाता आत्मा

ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਹਦੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਬੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ।

सा कूड़ी रस कूड़ावा पार कूड़ बोल कर आह शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाए हथ छुरे जगत का साए नील वस्त्र पैर होवे परवा मलेच धारण ले पूजे पुरा अपाख्या

उद्यम करो, कराव ठाकुर पेक

बैसंत देवता लो पंजवा पाया किरत ताहो अपाक पवित पापी सो तन गड्या थुका पया तित।

Bahia.

वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पा साहिब से ती हुक्म न चले कही बने अरदा कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगा।

Ordinant, Nakhna Jatni Atate Parava, Ape Sati Pratre Ma.

देख सरंजार गुरु गोविंद सिंह साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभावे जो गुरमुख प्यारा से बंदे तिन हर फल पावे जिन गुरमुख प्यारा सिवया तिन को घुम जाया हो आप सुटे परवार सो सब जगत सड़ाया हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी संजात को

गुर को बल जयां सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु

गुणवंतिया गुणसार है अपने कंत संभाले ना कदे लगे विजोग सचड़ा फिर सलाही सब किस करने जोग सचड़ा साहिब शब्द पसानी आपे ले मिलाए सातन प्रिय के रंग रती विचो आप गवाए विचो आप गवाए फिर काल न खाए गुरमुख एको जाता।

0: सबद रंग राती जोवन माती फिर के अंक समाए सचड़ा साहिब शब्द पसानी आपे लय मिलाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे जे सौ चंदा उग वहें सूरज चढ़ हैं हजार इते चानन होंदियां गुर बिन कोर अंधार ज्ञान त्यान कुछ कर्म न जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लाभो बिखम नदी जाए तर

0: दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सत्कार योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ भाई साहब जी पासों सरवण कीता। पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते मन बिरतियां नू एकागर करदे होए निमाणे जे हो के समरथ गुरु महाराज दे चरणां विच जुड़न दा यतन करिए। गुरु पातशाह जी अज दे शब्द दे राहीं मनुखी दुनियावी जीवां नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा यतन करिए जी।
1: वड हंस महला तीजा एक ओंकार

0: ना कदै होवै सोग।
1: आप जी रोजाना इस अस्थान तों लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करदे आ रहे हो। वडहंस राग दे विच गुरु अमरदास महाराज तीसरे पातशाह जिन्हां दा अज ज्योति जोत समावण दा वी दिन है, धन गुरु अमरदास महाराज जी वल्लों ये पावन शब्द उचारण किया। जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बाणी दी एकत्रता करके पावन ग्रंथ साहिब जी तैयार किते रामसर दे अस्थान ते, तो महाराज जी ने हर एक गल दा ध्यान रखिया कि किमें असी बाणी पढ़नी है, किमें उदा उचारण करना है। अज जिहड़ा ये आरंभ हुंदा है वडहंस महला तीजा, इहदे अगे फिर लिखिया होया है महला तीजा। पहले गिणती दा तीन पाया, फिर अगे जिहड़ा वो अक्षरां दे विच लिखिया होया है तीजा। इहदा मतलब है कि असी तीन नहीं बोलना, असी इहदा उचारण जिहड़ा है वो तीजा करना है। सतगुरु महाराज जी ने सानू समझाया है बाणी दे विच, इसलिए महाराज ने नाल ये भी लिख दिता कि महला तीजा, पावे नू तीजा करके असी उचारण करना है। शब्द दा मूल मकसद, असी परमेश्वर तो विछड़े हुए हाँ और जिदे नाल असी मिलना है, जिनू असी मिल के सदीवी सुख पाउना है, वो है एक ओंकार। एक ओंकार दी प्राप्ति, उदा ज्ञान, उदी सोझी सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु दे ज्ञान राही ही हो सकती है, गुरु तो बिना नहीं। सानू संसार दा ज्ञान ते हो सकता है, पर निरंकार दा ज्ञान जिहड़ा है वो नहीं हो सकता। निरंकार दे ज्ञान वास्ते सतगुर प्रसाद, सतगुरु दी कृपा दी सानू लोड़ है। उरे गुरु अमरदास महाराज जी तो वद कौन जान सकता है कि एक सतगुरु ही है जो सानू एक अकाल पुरख परमेश्वर दे नाल मिला सकता है, साड़ी जीवन यात्रा नू सफलियां कर सकता है। तो गुरु अमरदास महाराज जी शब्द दी आरंभता करदे ने, प्रभ सचड़ा हर साला ही है। जेड़ा हरी परमेश्वर प्रेम दी मूरत है, सदीवी है, सच्चा है, साला ही है, उदी सिफत सलाह करदे रहना चाहिदा है, उदे गुण गाउंदे रहना चाहिदा है। ते सिफत सलाह करन दे नाल की होएगा, होवै सिफत खसम दी, नूर अरशों कुरशों चट्टी है, तुद डिठै सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। महाराज जी कहिंदे ने जदों तुसी हरी प्रभु दी सिफत सलाह दे विच जुड़ोंगे, कारज सब किछ करना जोग, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆਵੀ ਤਲ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਕੁਛ ਕਾਰਜ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ, ਧਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ। ਕੁਛ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਤਮਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਆਤਮਕ ਤਲ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਤਲ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਘਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਣਾ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਸੱਚੜਾ ਹਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, जो सिफत सलाह दे योग है उदी सिफत करिया करो, वह है प्रभ सचड़ा सदीवी, तुहाडे सारे कारज पूरे हो जाएंगे। अध्यात्म कारज तो होएगा ही होएगा, होर भी कारज पूरे हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे कारज पूर्ण करन दे योग है, समर्थ है। प्रभ सचड़ा हर सा लाही है, कारज सब किछ करने योग, सारे कारज पूरे करन दे योग है। सा धन रंड न कबहू बैसई, ना कदे होवै सोग। महाराज जी कहिंदे सा धन, इत्थे धन दा अर्थ इस्त्री है, साडी जीव आत्मा। ये जड़ी जीव इस्त्री है, साडी आत्मा है, एक कदे रंड न, रंड कहिंदे आ जिहड़ा जिन्हों पति ने छड़ दिता होवे। असी उन्हों ये शब्द एक वरतदे आ भी ये रंड है, भाव जो पति तो विछड़ जाए जां पति दा पल्ला छड़ देवे। जिहड़े अपने पति नूं छड़ के दर दर भटके, असी उन्हों एक शब्द दे दिंदे आ कि ये रंड है। महाराज जी कहिंदे ओ जीव इस्त्री जीव आत्मा कदे भी सा धन रंड ना कबहू वैसे ही, क्योंकि उन्हों उदा पति प्यारा मिल जांदा है परमेश्वर। बारों असी देखांगे ते मेल भी है ते फीमेल भी है, इस्त्री पुरख, पर जदों अंदर देखांगे ते साड़ी जड़ी आत्मा ये भी इस्त्री है, इहदा पति इक्को ही है, वह है परमात्मा। तो महाराज कहिंदे उन्हूं कदे सोग लगदा ही नहीं है, कदे वह गम दे विच जुबदी नहीं है। जीव इस्त्री वह सदा हरख दे विच है, क्योंकि उन्हूं पति परमेश्वर दे चरणा विच जुड़ना नसीब हो गया, जिन्हें प्रभ सचड़ा हर साला ही है, जिन्हें प्यारे प्रभु नूं दी सिफत सलाह कीती। एक पति है परमात्मा, ते असी गुण भी एक दे ही गाने है, एक दी सिफत करनी है। फिर महाराज कहिंदे उहदी जिंदगी दे विच सा धन ओ इस्त्री रंड न कबहू बैसई, उहनूं कोई नहीं आखेगा भी ये पति तो विछड़ी हुई है। ना कदे होवै सोग, उदी जिंदगी च कदे सोग वाला समा बनदा ही नहीं, वो कदे गम दे विच दुखां दे विच नहीं हुंदी। फिर दोबारा रिपीट कीता महाराज जी ने, गुरु अमरदास महाराज समझाउंदे हन,
0: ना कदे होवै सोग अन दिन रस भोग, सा धन महल समाणी।
1: कहिंदे फिर दोबारा रिपीट करदे आ, ना कदे होवै सोग, उनू कदे भी परमेश्वर तो विछड़ के सोग गम दुख चिंता ये कदे उनू लगदे ही नहीं। अन दिन रस भोग, सा धन महल समाणी, वो जड़ी जीव इस्त्री है अपने पति दे महल विच, अपने पति परमेश्वर दे घर विच समा जांदी है, टिक जांदी है, ते दिन रात उदे नाम दा रस भोगदी है, रस माणदी है। उनू फिर कोई नहीं कहेगा भी ये पति दे दर तों जिहड़ी है वो छुट के दर दर ते भटकदी है, नहीं, उनू फिर सुहागण कहा जाएगा भी अपने सुहाग दे घर विच रह के उदे नाम दा रस माणदी है। जे असी बाहर दी गल देखिए, पति परमेश्वर दा नाम छड़ के परमात्मा दा, लोक भटकदे फिरदे आ, कोई किसे दा नाम सिमरदा पिया, कोई किसे दा, कोई किसे दा नाम जपदा, कोई किसे दा। एक गल सीधे लफ्जां दे विच आखदियां जिहड़ा परमात्मा दा नाम छड़ के होरां दा नाम जपदा है उनू सुहागण नहीं किया जा सकता, उनू दुहागण किया जाएगा। उनू फिर ये रंड शब्द उदे वास्ते वरते है। हुण असीं अपने जीवन विच झाती मारनी है कि एक परमेश्वर का आसरा है, एक परमेश्वर का नाम है मेरी जिंदगी च। ता महाराज कहिंदे फिर ना कदे होवै सोग, अन्न दिन रस भोग, सा धन महल समाणी। वो अपने पति प्यारे दे महल विच टिक के

प्यारे पति नू जान लिया पछाण लिया कि वह कर्म विधाता है, वह कर्मा का नबेड़ा करने वाला है, वह कर्म के मुताबक फल देने वाला है। जिन्हें परमात्मा नू जान लिया प्यारे नू कि वह कर्म विधाता, बस आ गल ही समझ लीए आप कि मेरे कर्मां दा नबेड़ा भी उन्हें करना है, मेरे कर्मां दा फल भी उन्हें देना है। फिर असी दर दर क्यों भटक रहे हैं? कोई सियाणियां दे चक्करां च पिया होया है, कोई बाबियां दे चक्करां च पिया होया है, कोई मड़ियां ते कोई मसाणां दे चक्करां च पिया है, जबकि साडे कर्म दा फल परमात्मा ने देना है। दावेदार ते बड़े बैठे ने, असी तुहानू फल देंगे असी देंगे, पर यह दात किसी दे हाथ, ये पावर किसी दे हाथ नहीं है। कर्म विधाता इको ही है। असी भरम दे विच भटक रहे हैं क्योंकि असी उन्हूं जानिया ही नहीं हजे तक, असी उन्हूं हजे पछाणिया ही नहीं, ताई ते दर बा दर भटक रहे हैं। महाराज कहिंदे जिथे मर्जी भटक लो, कर्म विधाता इको ही है। इको ही है जिन्हें तुहाडे कर्मां दा नबेड़ा करना है और जिन्हें तुहाडे कर्म दा फल तुहानू देना है। कोई नहीं दे सकदा, ये दात उन्हें अपने हाथ च रखी है, ये पावर उन्हें अपने हाथ च रखी है। इसलिए महाराज समझाउंदे ने कि जिन जिस जीव ने प्रियो जाता प्यारे नू जान लिया, कर्म विधाता कि वह कर्म दा विधाता है, बोले अमृत बाणी, वो फिर दिन रात अमृत बाणी दा जाप करदा है, वो दिन रात नाम दी कमाई करदा है। वो किसे दूजे होर कोल जांदा ही नहीं, ना ध्यान किसे होर दूजे दा हुंदा है। वो कहिंदे मेरा इक्को ही मालिक है पति परमेश्वर, ते उदे अगे ही मेरी दुख सुख दी अरदास है। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जिना जेड़ी जीव इस्त्री अपने पति दे नाल जुड़ी होवे, ध्यान रखना उदा ध्यान कदे दूजे पासे नहीं जाएगा, ते दूजियां दा ध्यान उदे पासे नहीं आएगा। आप सारे सूझवानो, जेड़ी पत्नी अपने पति दे नाल तुरी है, उस पत्नी दा ध्यान होर पासे नहीं जाएगा और होरां दा ध्यान उस पासे नहीं। हाँ, जदों पति ने छड़ दिता जां उदे तो अलग हो गई, फिर बहुतियां दा ध्यान उस पासे हो जांदा है। कारण पति तो विछड़ गई, पति तो दूर हो गई। ये गल समझनी सौखी है। जिवें महाराज कहिंदे छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुंझे अंदर खेत, खेत दा मालिक तो इको ही सी, पर जदों उन्हें तिलां दे बूटे देखे भी इन्हां विच तो है ही कुछ नहीं, उन्हें छड़ दिता। जदों वह छड़ के तुरिया तो 100 खसम बन गए उदे। फिर उत्थे हर कोई आके वो पए हुए तिलां दे बूटियां नू चुकन लग पिया, कदों जदों मालक ने छड़ दिता। इसलिए महाराज जी कहिंदे आ कि जेड़ा पति परमेश्वर नू जिन्हें जान लिया, जिन प्रियो जाता, जाता मतलब जान लिया, पछाण हो गई, कर्म विधाता भी मेरे कर्मा दा विधाता तो इको ही है, फिर बोले अमृत बाणी, फिर वो उदे गुण गाउंदी है। गल आत्मा दी हो रही है, अंदर दे जीव इस्त्री दी। फिर वो परमेश्वर दे रब्बी अमृत बाणी, अमृत रस नाल भरपूर बाणी दा जाप दिन रात

ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਜਨਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲਓ, ਪਛਾਣੀਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ, ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਵਗਣ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਭੀ ਹੰਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਯੋਗ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਪੈਣਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੋ, ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਲਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁੰਨ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਬਾਹਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇਜੋ ਤਨੋ, ਤੇਜੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਈ ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਈਸ਼ਰਦਾਸ, ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ,
गुरु महाराज का 69 का प्रकाश है, तो इधर 79 है, 10 साल का फर्क है। और गुरु अंगद देव महाराज जी तो 25 साल वड्डे ने। गुरु अमरदास महाराज, जे शरीर की गल करिए आपां, गुरु नानक साहब तो 10 साल छोटे, तो गुरु अंगद देव जी तो शरीर करके 25 साल वड्डे आ, 25 साल। पर जे असी गुरबाणी दे विच भाई सत्ता ते भाई बलवंड जी नूं आपां पढ़िए, तो वह कहण लगे भी गुरु नानक साहब दादा जी ने, गुरु अंगद देव जी पुत्र पिता जी ने, ते गुरु अमरदास महाराज जी जिहड़े ने वह गुरु नानक साहब दे पोते ने। प्यो दादे जे वेहिया पोता परवान, बाणी च पढ़ देना आपां, प्यो दादे जे वेहिया, प्यो ते दादे वर्गा, जदों पोता हो गया ते परवान। हुण जे असीं अध्यात्मक तल देखांगे, उत्थे गुरु अमरदास जी पोते, पोता छोटा हुंदा है, दादा वड्डा हुंदा है, पिता वड्डा हुंदा है, ते पितर पुत्र छोटा हुंदा है ना। शरीर देखांगे ते 25 साल वड्डे ने गुरु अंगद देव महाराज तो, पर अंदर अध्यात्मक जीवन देखांगे ते उत्थे पोता कौन है, धन गुरु अमरदास जी, पिता कौन है, गुरु अंगद देव जी, ते दादा धन गुरु नानक साहब ने। क्योंकि नादी पुत्र ते बिंदी पुत्र ये दो चल रहे ने। जदों बाहर दियां यात्रावां करदियां होयां चोट लग गई, नाल दा एक तुरिया आया यात्रा दे दौरान, साधु सी, बंदगी वाला सी, घर तक आया, आके जल पानी छकिया, ते सुभावक ही पुछ लिया भी तुसी किहड़े गुरु नूं धारण कीता पाव। ये गल देखो, जोगियां ने गुरु नानक साहब नूं भी पुछी सी, तुहाडा गुरु कौन है, अक्सर पुछिया जांदा सी पहलां भी तुहाडा गुरु कौन है, जोगियां ने गुरु नानक साहब नूं भी किया, ते महाराज कहिंदे शब्द गुरु सुरत धुन चेला। उस साधु ने अमरदास जी नूं पुछया, बाबा अमरदास जी नूं 60 साल तो उपर उम्र हो गई है, कहिंदे गुरु कौन है तुहाडा, बस उत्थे शब्द कोई नहीं निकलिया, एक चोट जी लग गई कि हजे तक मैं गुरु नहीं धारण कीता, ते गुरु बिना गत नहीं हो सकती, गति नहीं हो सकती। वो रात नींद नहीं आई, अमृत वेले बीबी अमरो जी ने शब्द पढ़िया, करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला दोए लेख पए। देखो असी महाराज ने सानू वो नुकता दिता है जिहड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज कहिंदे तू घर दे काम भी कर ते नाल नाल अपना नितनेम भी कर, ये नहीं कि काम छड के नितनेम कर, तू किरत भी कर अपनी, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन, घर दे काम करो नाल नाल बाणी पढ़ो, नाल नाल बाणी, हुण बाणी तां पढ़ांगे जे सानू कंठ होएगी, बाणी आपां कम से कम नितनेम दी जिहड़ी बाणी आ, चलो कम से कम जपजी साहिब ही सानू कंठ हो जाए, ते असी घर दे काम करदे करदे जपजी साहिब दा पाठ कर सकदे आ। ओ हुण रिड़कदे आ ते नाल नाल शब्द पढ़दे आ, जदों शब्द पढ़दे आ ते उस शब्द विच बचन आउंदे आ, भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा, जे गुरु मिल जाए गुरु ओ पारस है कि ओ मनूर नू फिर दोबारा कंचन कर सकदा है। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम, कहिंदे ने समझ आ गई बीबी अमरो जी नू बेनती करदे आ। यह सारा इतिहास सुनिया है, संखेप विच अगे नू चलना। बीबी अमरो जी नू बेनती करनी, बीबी अमरो जी फिर लैके चलदे ने खडूर साहब, बाहर बैठे ने गुरु अमरदास जी, अंदर धी दे रूप विच अपने पिता जी कोल गए, ते गुरु अंगद देव जी कहन लगे पुत्री असी ते बुलाया नहीं, बिना बुलाया क्यों, आ गल्लां नोट करन वालियां ने अज कि असी ते बुलाया नहीं, तो बिना बुलाया किवें आ गई, कोई काम है, असी ते कोई नहीं तैनूं सद्दा दिता, तू सहुरे घर तो पेके घर किवें। कहन लगी पिता जी एक देखो डर हुंदा सी,
एक अंदर प्रेम हुंदा सी, पिता जी मैं अपने आप नहीं आई हाँ, मैं अपने घर दे बजुर्ग नू लेके आई हाँ, मैं अपने घर दे वडेरे दे नाल आई हाँ। अज दा माहौल आपां जानदे हां, धीआं किवें तुरियां फिरदियां, ते बीबी अमरो जी कहिंदे मैं कल्ली नहीं आई, मैं अपने घर दा बजुर्ग लेके आई हाँ नाल, मेरे घर दा वडेरा आया है। सब तो वड्डे ने गुरु अमरदास महाराज। ते गुरु साहब कहिंदे फिर जिन्हों लैके आई है उन्हू ते बाहर बैठा आई है, जिहड़ा मिलन लई रात दा तड़पदा पिया है। बस वो खुशी दी हद नहीं सी बीबी अमरो जी दी, ते जाके कहिंदे बापू जी पिता गुरदेव जी अंदर सद्दे है। जदों अंदर गए हुण गुरु अंगद देव पातशाह नूं पता है कुड़माचारी है, ते आपां नूं भी पता है कुड़माचारी च किद्दां मिलदे आ आपां, ते जे कोई ना बुलावे ना मिले ते मूँह विंगे हो जांदे आ वी कुड़माचारी च फलाने ने मैनूं बुलाया नहीं, फलाने ने मैनूं नहीं बुलाया, ते कुड़माचारियां च आपां देखदे आ मूँह विंगे हो जांदे ने। गुरु और दूजी गल, गुरु अमरदास जी पुत्रां वाले आ, ते गुरु अंगद देव जी पुत्री वाले ने, बच्ची धी वाले आ। कहिंदे कुड़माचारी आ ते उठ के अगे हाथ कीते भी गल नाल गल ला के मिलांगे, ते गुरु अमरदास जी चरणा विच सीस रख के ते कहन लगे पातशाह अज मैं कोई कुड़माचारी नभाउण नहीं आया, अज मैं तुहाडे चरणा दा गोला बनन वास्ते आया। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सहेले राखो, राखण हार दयाला नानक घर के कोले। फिर गोले बन के सेवा शुरू हो गई, कदे लंगर विच सेवा, कदे संगत विच सेवा, ते कदे गुरु महाराज दे इशनान दी सेवा, और नाल नाल शब्द विच घड़ना शुरू कर दिता। 12 साल लंघे ने सेवा ते सिमरन करदियां, इन्ना गुण अंदर भर लिया, इन्ना गुण अंदर भर लिया सतगुरु महाराज जी ने कि भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। एक पहले दिन डिगे सी, अज दूजी बार बरसात हो रही, ते गागर लेके आए वो जलाहे दी जड़ी खड़ी, उदी किल्ली नाल पैर अटक के डिगे, गोडे ते सट भी लगी, लेट हो गए। गुरु अंगद देव महाराज ने पुछया, कहन लगे महाराज अज बरसात करके ना पैर फिसलिया ते मैं डिग गया, ते सतगुरु जी हस के कहिंदे मैं ते कदों दा देखदा सी कि कदों ये डिगे ते कदों चुक के उपर बिठावां। फल जदों पक जांदा ना ते वह टुट जांदा आप ही, फल पक्या डिगदा ना, फिर असी उहनू खाईए ते उहदा सुआद ही वखरा। कहिंदे हुण तुसी 12 सालां विच पक चुके हो, इन्ना पक चुके हो, मैं ते उड़ीकदा सी कि कदों ये पक के डिगण ते चुक के मैं इन्हां नू चवरां ते तख्तां दा मालक बना दा। गुरु अंगद देव महाराज ने गुरता गद्दी दे के नवाजिया, चवरां तख्तां दा मालक बना के निमाणियां दा माण, नितानियां दा तान, नियोटियां दी ओट, न्यासरियां दा आसरा बनाता। फिर गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी गोइंदवाल फिर वसाया, गोइंदवाल भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने, कहिंदे फिर गोइंदवाल साहब आके वसे। सिर्फ संखेप विच अर्ज कर रहे हैं, एक एक गुण आपां गाइए तो बहुत समा लग जाएगा। गोइंदवाल साहब आके जदों वसाया महाराज जी ने, तो आपां पिछले दिन ही सुनिया गुरु रामदास महाराज दे गुरता गद्दी दिवस ते किवें भाई जेठा जी बन के आउंदे आ। इत्थे महाराज जी ने फिर देखो किन्नी जागरता लियांदी, बेलोड़ियां रस्मां खत्म कीतियां। अज असी अपने आप नूं गुरसिख अखाउंदे आ, असी बेलोड़ियां रस्मां वधा के फिर कहिंदे आ गुरु वाले आ, ते गुरु महाराज ने बेलोड़ियां रस्मां खत्म कीतियां। महाराज ने कहा गुरु के सिखो ध्यान रखियो, पहले पंगत पाछे संगत फिर रंगत। पहले पंगत विच आके वितकरे खत्म करो, उच नीचता दे गरीबी अमीरी दे, फिर संगत विच बराबर आके बैठो, तां तुहानू नाम दी रंगत चढ़नी है, तां रंगत तुहाडे अंदर आएगी। पंगत करो,
पंगत विच सारे ही आउण लग पए। गरीब भी अमीर भी खत्री ब्राह्मण शूद वैश सारे ही आउण लग पए। तो ये शिकायत पहुँच गई अकबर दे कोल। जो अकबर बादशाह कोल शिकायत पहुँची उन्हें चिट्ठी भेजी भी इत्थे आके तुहाडे कुछ शंकावां ने उन्हां नूं क्लीयर करो। फिर गुरु महाराज ने भाई गुरु साहब ने भाई जेठा गुरु रामदास जी नूं भेजिया सारियां गल्लां क्लीयर कीतियां अकबर बादशाह दे दरबार विच। जदों सारियां गल्लां क्लीयर की

की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रसाद दान दान सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जिया दे दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा

अमृत वेले दे दीवान सजाए गए, सजे हुए दीवान अंदर श्री आशा दीवार दे शब्द कीर्तन, गुरबानी लड़ीवर कथा विचार, से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखरवादा घाटा भुल चुक माफ करनी, आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी, तिल फुल पेटावा दर प्रवान करनिया, यात्रावा सफल करनिया, धरों करों गुर सिखी जीवन, नाम बाणी दियां दातां बख्शनिया, चढ़दियां कलावां तंदुरुस्तियां बख्शनिया, कलंगी तर सच्चे पातशाह, धन धन साहिब श्री गुरु।

0: सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभ को मिल बोच है राज करेगा खालसा। खुआर हुए सा मिलेंगे, खुआर हुए सा मिलेंगे। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। दंडोत बंदन अनकबार, सर्ब कला समरथ

सहज सुभाए, दर्शन परसिए गुरु के जन्म।

सेव है तिन पौ दुख नाहे। गुर प्रसाद नानक गुण गाहे।

सगल समग्री तुमर तुमते होए सो तुमरी गत मित

और पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सके हाजिर है, धर प्रवान होवे। आप जी करो कृपा अपनी अमृतमय बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो। हुक्म अनुसार जीवन जिउण दी समर्था बख्शो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी।

नित करो जो दरिया जिथे जाई बहे मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे मेहरवान साहिब मेहरवान

नाही कोए, ना को होआ ना को होए, जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात, जैना दैना करके कीती रात, खसम मिसारी ते कम जात, नानक नामे बाईस नात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव, मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलें त्रिपता सही, मिल संगत गुण परगास, जना हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया,

उद्यम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुत बहिता कोए न किसकी तरया सिर से रिजक समाहे ठाकुर कहे मन पौ करया ऊडे ऊड़ आवे सोसा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परावरिया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परावरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्या वहें सब त्या वहें तुदजी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब नरंतर जी हर एक को पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर ते आवहें हर ते आवहें तुद जी से जन जुग में सुख वासी से मुकत पाए जैनो हर ते आया जी तेनो टूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी।

0: जी तप तापहि जपहि बयंता तेरे अनेक पढ़े बहुसिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू दहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिस नाओ कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदे आप बिछोड़या आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खे वियोग मिल बिछोड़या संयोगी में जिसनों तू जानहि सोई जन जाने हर गुण सद ही आक वखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े पाईरे निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकजो मह पग नहीं चले हम दिखा तहें डूबी अले मन एक नचे तस मूड मना हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म भया प्रणवंत नानक तिनकी शरणा जेनो तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मान खुदे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेर किते न काम मिल साद संगत भाज केवल नाम स्रंग जाम लाग पवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्या हर राया कोह नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रख हो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्या हर राया कोह नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रख हो शर्मा इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह बादशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई अमरी करो हद रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट स्वभाव तुम काबो, आप हाथ दे मुहि बचाव हो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबैरन को आय संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड कोई अवरणा ध्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिखा मार तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिये। आभाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख लियो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तही हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव देंद जक्षण उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजाजने आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो। कटकट गए अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चिंटी दे कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने, कटकट के पटपट की जन्ने। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा धरत तव देह अपारा। जब आ कर्क कर तुह कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत भेद भेद अर आलम। रंकार निर्विकार निरलंब, आद अनीन अनाद असंभ। ताका मूड़ उचारत पिता, जाको पीव ना पावत बिदा। ताको कृपाहण अनुमानत, महामूड़ कछ पीत ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव, रंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा न जय पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा। अंड जे रसे तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी। कहो फूल राजा हवे बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकठा। सगरी सिष्ट दखाए अचंभव, अजुगा स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो बार आसिक संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणगाता, जे अस्तु जे तब शरणी वरे, तिनके दुष्ट दुख तहाय मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट न है, रक्षा हो दाही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जहे न हरियो, ताकि ताप तनक मै हरियो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसती ताही ओबारा, जिन नारायण नाम तिहारो कहा, दारे दे दुष्ट दोख तेरा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो ओवारी, सर ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी, सर्व ठोर मोह हो सहाय, दुष्ट दोख दे ले हो बचाई, सवैया पाई गहे जबते तुम्हारे, तबते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहीं मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहें, हम एक ना जान्यो, सिरियस पान कृपा तुम री कर, मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार, बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा, सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार, बही गहे की लाज अस गोविंदास तो है, राम कली महला तीजा अनंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनंत पाया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वादाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आइया, शब्दो तंगावो हरी केरा, मान जिनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब में सारना, अंगीकार ओह करे तेरा, कार्य सब सवारना, सवना गलना समृत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, सचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, करता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जैनों भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है बसया, जैन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनहो संतो, शब्द धर प्यारो साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंशव तित घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया पंच दो तुद बस कीते, काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको, से नाम हर के लागे कहे नानक तसुख होआ, तित घर अन्न हद वाजे आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पर ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे, पूरे गुरते जानी सुनते पुनी, कहते पवित सतगुर रहा भर भूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अन्न हद तूरे सुनते पुनी, कहते पवित सतगुर रहा पर रे, भिन्नवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अन्न हद तूरे। मंदामणि महला पंजवां, थल विच तिन वस्तु पइयो, सत्य संतोख विचारो, अमृति नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे अधारो, जे को खावे जे को पुंचाए, तिसका होए उधारो, एह बस्त तजी रह जाई, नित नित रख और तारो, तम संसार चरण लग तरी है, सब नानक ब्रह्म पसारो। स्लो महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पायोई, तरस पाया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया, तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम तैयार पास, जियो पिंड सब तेरी रास।

अगम आगाध ऊंच आपार जो तुद सेवा है तिन भव दुख नाही गुर प्रसाद नानक गुण गाहे।

गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए। जिन जपया तिसको बलहार,

प्रबलोचापूर संत जना की बांछो तूर जिन जपया तिसको बलहार तिसके संग तरे संसार कहो नानक प्रबलोचा पूर संत जना की बांछो तूर वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

जीव गुरपुरा जन सिमरिया सही पै निहाल नानक नाम अराधना अर्जिया विरास पूरा प्रभ अराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ खंब विकांदड़े जे लहा किन्ना सामी तोल तन जड़ाई अपने लहा सो सज्जन टोल।

0: पते
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।
0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

वाहे गुरु जी की फतेह। सुवैये महले पंजवें के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमरं सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कवल रिद तारंग, गुर अर्जुन गुण सहज विचारंग, गुर रामदास कर कियो प्रगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा, तै जनमत गुरमत ब्रह्म।

गुर रामदास अर्जुन वरयो पारस परस परमान सद जीवन अर्जुन अमोल आजो नी संभो पै पंजन पर दुख निवार

असंभव उद्वयो पुरख पूरन विदातो नानक आद अंगद अमर सत

जय जयकार। जास जगे अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता। गुरपुरा पायो बड़ भागी, लिव लागी मेदन पर सहता। पै भंजन पर

मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उर आद पुरख पर तख लिख्यो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमगे तेज पू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर

जग ओ न जाए महात्म मैं, अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन

परतश हृदय गुर अर्जन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। जबलोनी भाग लीला रुदे तबलो भ्रमते फिरते बोतायो। कल कोट समुंदर में बोडत थे कबहू मिटह नीरे पछतायो।

0: फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
1: काल समुद्र पे रूप प्रगट हर नाम उधारन, बसे शांत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारन। निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जानियो पयो तसम सर सोई। तरन गगन नवखंड में ज्योत

कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद जिठे सचे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पात शाह सिर शाहां दे शाहो जिस पास बैठियां सोई है सबना दा वेसा

तन मन शीतल होया रसना हर साद आया शब्द ही नौ उपजै शब्द मेल मिलाया बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सो हर पुरख आगम है कहो कित बिद पाइए तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याइए निरंकार निरंजन हर अगमा क्या कह गुण गाइए जिस आप बुझाए आप सोहर मार्ग पाइए गुर पूरे वेखा लिया

ਸਮ ਕਿਆ ਕਹਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਸੋ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਈਐ।

वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु।

Yeah.

ഓയിലും ട്യൂപ്പായി കളിക്കുന്ന ഹാവ് നാ പാൻ പുറം കാലി.

स्माद् वेद विस्माद् जीव स्माद् भेद स्माद् रूप विस्माद् रंग विस्माद् लंग विखेजन विस्माद् पाण विस्माद् पाणि विस्माद् अग्नि खेड़े विडाणी

Ja, was denn da jetzt mit der Karte?

0: अपने तेरे सत गुरु पाया हो जो मैं तेरे को मैं का सत शब्द सुनाया सत गुरु जी का तन में सब को रख सपाया सत गुरु ने सच पाए दिन जो आप जिन सच सच जाए जिन सच सच आया।
1: असा महला चौथा तहन।